0: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत।

0: विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त नाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। नवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने पिछले एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल

0: की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोरांबा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह।

0: देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। पार्लियामेंट पासेस टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू रिमेन फ्री फॉर कंज्यूमर्स। Government notifies 11 more international ports, enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি, 12:05ত ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
2: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबी

फौजी भाइयों, अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। 1:40 का समय है कार्यक्रम पनघट का। दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

दिन के 2:30 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम गुंजन। इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। और फजी भाइयों, इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज आपके साथ रहूंगी मैं गुना प्रभा पौरा।

फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत है हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। राहत फतेह अली खान की आवाज में सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है पाप।

अभिजीत और अलका याग्निक से चलते चलते फिल्म के इस गीत को सुनने के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत, आवाज़ SP बाला सुब्रमण्यम की।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे साजन फिल्म का एक गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। आइए सुनिए गीत अलका याग्निक और SP बाला सुब्रमण्यम से।

फौजी भाई, हमारा अगला कार्यक्रम सुनवाने से पहले आइए आपको बता दें कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल बुधवार है, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत और 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर कार्यक्रम फिल्मी नगमे, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर कार्यक्रम तरंग, 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 का समय है कार्यक्रम प्रीत लड़ी का। इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। फौजी भाइयों, ये थी कल के कार्यक्रमों की जानकारी। बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलो हर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलो हर्ट्ज पर। फौजी भाइयों, लीजिए पेश है कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनामिका फिल्म के इस गीत से। आवाज़ है आशा भोसले की।

0: फौजी भाइयों, आशा भोसले की आवाज़ में आप सुनेंगे एक और गीत, साथ में है किशोर कुमार। फिल्म का नाम है सीता और गीता।
1: अरे अरे ए

फौजी भाइयों, इस वक्त आपके साथ हूँ मैं गुना प्रभा बोरा, लेकर कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। आपको बता दें, हमारी आज की फिल्म है LOC कारगिल। सुनते हैं फिल्म का पहला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में।

जेपी दत्ता निर्देशित फिल्म एलओसी कारगिल भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म में 40 से ज्यादा मुख्य कलाकारों ने भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म के गीतों को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत अनु मलिक का है। अब सुनिए फिल्म का ये युगल गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

एक फौजी अपने घर से दूर देश की सेवा में लगा रहता है और उसका जीवन और उसका पूरा परिवार देश की सुरक्षा को समर्पित होता है। घर की यादों को वो फौजी अपने दिल में संजोए रखता है। सुनते हैं फिल्म का ये गीत। रूप कुमार राठौड़, सुखविंदर सिंह, हरिहरन, उदित नारायण और सोनू निगम की आवाज़ों में, और इन पलों को महसूस करते हैं।

प्राग्ज्योतिष पर है, मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स, और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पनघट। कार्यक्रम का आगाज करेंगे नैया फिल्म के इस गीत से, जिसे गा रही हैं हेमलता।

0: इन्हीं गीतों के साथ फौजी भाइयों पनघट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस समय दिन के 2 बजने को हैं। बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉ संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने

0: आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले

0: राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। फौजी भाइयों, हमारे प्रसारण में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

इन्हीं गीतों के साथ फौजी भाइयों गुंजन कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। सैनिक भाइयों के हमारे आज के प्रसारण का अब यहीं होता है समापन। कल 12:10 पर आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम

0: कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है महिलाओं से जुड़ा एक खास रोग, एंडोमेट्रियोसिस। क्या है ये बीमारी, शरीर में क्यों पनपती है, कारण, निवारण, यानी पर्याप्त जानकारी आपको मिलेगी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, और आपसे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि आप फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली से संबद्ध हैं। यदि आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज के विषय से जुड़ा या स्त्री रोग से जुड़ा आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचाइए, तुरंत फोन उठाइए, कॉल करिए। नंबर है 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप नंबर डायल करिए। इधर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल आज का यही है कि क्या है एंडोमेट्रियोसिस।
1: एक शब्द में समझाना तो बहुत मुश्किल है। ये एक लंबी बीमारी है जो मुख्यतः औरतों को प्रभावित करती है। आज के समय में चाहे वो यंग गर्ल्स हों, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज की औरतें हों, चाहे वो मेनोपॉजल वुमेन हों, हर किसी में ये बीमारी पाई जाती है। ये समझना कि हर महीने जब हमें पीरियड्स आते हैं, हम बच्चेदानी की लाइनिंग को शेड ऑफ करते हैं
0: जी।
1: और वो बच्चेदानी के रास्ते से वो बाहर आ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में वही सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर, यूट्रस के पीछे, ओवरीज के ऊपर या ट्यूब्स के ऊपर पाए जाते हैं
0: जी।
1: जब साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है, चूँकि वो अंदर ही ब्लीड करते हैं वो सेल, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बारी ओवरी में उनसे सिस्ट बन जाती हैं और बच्चेदानी, ब्लैडर जो उसके आगे है या बॉवल जो उसके पीछे है, ये सारी चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं
0: जी।
1: यूजुअली सिम्टम्स जो इसमें आते हैं उसमें आपको मेन सिम्टम होते हैं पेन के। तो हमने सुना है कि जो लड़कियां यंग होती हैं 16-17 साल की, उनको सीवियर पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड। एंडोमेट्रियोसिस का एक सिम्टम ये भी हो सकता है
0: जी। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है। फिलहाल यहाँ एक ले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एंडोमेट्रियोसिस पर, और हमारी विशेषज्ञ ममता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहिबा की पसंद की ये प्यारी सी गज़ल हमने सुनी, अब हम चाहेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए स्टूडियो के नंबर्स आपको बता दें, नंबर है 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहिबा, अब अगला सवाल मेरा जो है वो ये कि थोड़ा सा इंडिकेशन आपने दिया था कि लक्षण होते हैं तो पेन होता है, लेकिन पेन बहुत सारी वजहों से भी हो सकता है, तो ये प्रॉपर लक्षण क्या होते हैं इस रोग के?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, पेन के कई कारण हो सकते हैं।
0: जी
1: मुख्यतः मुख्य तौर पे अगर हम कहें कि पेन ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स,
0: जी
1: वो एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन, मतलब पेन आप हमेशा महसूस करते हैं, या बैकएक, वो भी इसका एक लक्षण होता है। पेन ड्यूरिंग सेक्स इन यंग वुमेन, वो भी एक बड़ा सिम्टम होता है। पेन वाइल पासिंग मोशन और पेन वाइल पासिंग यूरिन, या पेशाब करते समय या मोशन पास करते समय जो पेन है, ये सारे पेन आपके लक्षण इंडोमेट्रियोसिस के हो सकते हैं।
0: जी
1: कई बार ये असिम्टोमेटिक भी होता है, मतलब आपके कोई लक्षण नहीं है पर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपने अल्ट्रासाउंड कराया उस कारण से, तब आपको पता चलता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है।
0: डॉक्टर साहबा, अगला हमारा सवाल है उसको लेंगे, उससे पहले हमारे एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना शुभ नाम बताएं।
2: जी, मेरा नाम सना है।
0: जी सना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: जी, मैं मेरठ से बोल रही हूँ।
0: बताइए क्या सवाल है।
2: मेरा सवाल है कि मेरी बहन 16 साल की है और उसके पीरियड थोड़े थोड़े आते हैं।
0: ठीक
2: अभी
0: है।
2: से पीरियड शुरू हुए हैं तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो थोड़े थोड़े आते हैं।
0: जी,
1: उसको पीरियड्स कब शुरू हुए?
2: जी, अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू हुए हैं।
1: पीरियड्स शुरू होने समय जो पेन होता है, उसका एक कारण ये होता है कि उसके अंडे बनने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर ये पेन बहुत बढ़ता है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, वो स्कूल से छुट्टी ले रही है या स्कूल जाना नहीं चाहती है, उस केस में इन्वेस्टिगेशन बनता है। उस केस में हम लोग कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा करके आप एक बार देख लो।
2: जी, डॉक्टर साहब, उसे ना बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार उसका टॉयलेट आता है।
1: हाँ, तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा करके देख लें उसमें क्या निकलता है, फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या वहाँ पे किसी लोकल डॉक्टर को भी अल्ट्रासाउंड के बाद दिखा सकते हैं।
0: जी, तो सना जी

0: की समस्या का समाधान आपने कर दिया है मैम। और अब जो हम बातचीत आज की कर रहे हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस पर। तो किस तरह से इसको जाना जाए, आपने बताया कि लक्षण क्या होते हैं, लेकिन जब ये रोग होता है तो किस शरीर को विशेष तौर पर प्रभावित करता है?
1: ये जो बीमारी है मोस्टली जो है ये पेल्विक ऑर्गन, जिसको मैं यूट्रस, बॉवल, ब्लैडर, उसके आसपास के हिस्सों को अफेक्ट करता है। बेसिकली ओवरी में या तो सिस्ट बन जाती है जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। कई बार ये अल्ट्रासाउंड में नेगेटिव फाइंडिंग्स भी होती हैं, मतलब हमें अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें नॉर्मल पता चलती हैं,
0: जी
1: फिर भी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो
0: हो
1: सकती
0: सकता
1: है। कई बार हमें एमआरआई भी करा करके देखना पड़ता है, क्योंकि एमआरआई में हमें ये पता चल जाता है कि बॉवल, ब्लैडर सब आपस में चिपके हुए तो नहीं है। बट सिम्टम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो भी हम लोग उसको एंडोमेट्रियोसिस मान के एम्पेरिकली ट्रीट कर सकते हैं।
0: मैम क्या कहेंगी कि इस रोग के होने का कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि आजकल जो खान पान है वो भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है उसका भी रोगों को बढ़ाने में या उनको बढ़ावा देने में।
1: एग्जैक्ट कारण का तो हमें पता नहीं है आज भी, पर
0: जी
1: अगर औरतें को जो माना गया कारण ये है कि आजकल की जनरेशन में जैसे हम प्रेगनेंसी लेट करते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग भी कम होती है, तो वी आर एक्सपोज टू मोर नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अलॉन्ग विद दैट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। इन दोनों के तहत कुछ लोगों को ये बीमारी आजकल पाई जाने लगी है, ज़्यादा हम देखने लगे हैं।
0: किस तरह के टेस्ट ज़रूरी होते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपसे जानेंगे। फिलहाल मैं टेस्ट जानना चाहूँगी कि क्या क्या होते हैं और किस तरह से कराने चाहिए, क्या सीक्वेंस में होना चाहिए।
1: अगर आपकी पेन से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, मतलब अगर आप एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं और पेन के कारण आप छुट्टी लेके घर पे बैठे हैं, या आप यंग एज ग्रुप में हैं और ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे हैं, या आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है और क्लिनिकली डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है, तो पहला जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम लोग कहते हैं। वो हमें कुछ हद तक आइडिया देता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हमें बताता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग एमआरआई की ओर जाते हैं।
0: जी हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हेलो
0: जी बताएं अपना नाम
2: मैम,
0: बताएं। जी
2: मैम सरस्वती, सरस्वती
0: जी सरस्वती जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
2: मैम अहमदाबाद से, आप अनुराधा मैम बोल रहे हैं?
0: जी बिल्कुल बोल रहे हैं और डॉक्टर साहिबा आपको सुन रही हैं। बताएं क्या सवाल है आपका?
2: हाँ जी मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार आपको भी, हम दोनों की ओर से नमस्कार, बताइए।
2: मैं ब्लाइंड हूँ
0: जी
2: और मेरा एक बेटा है, लेकिन
0: हाँ
2: आप ये जो एंडोमायोसिस के बारे में आप बता रहे हैं तो
0: जी
2: मैम इसमें डायबिटीज और सीट आते हैं मुझे, तो उससे भी रिलेटेड ये बीमारी हो सकती है?
1: नहीं, डायबिटीज़ अलग बीमारी है और एंडोमेट्रियोसिस अलग बीमारी है।
2: हाँ
1: एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली आपको पेन होता है बहुत सीवियर, नीचे के शरीर के नीचे के हिस्से में, बच्चेदानी के हिस्से में, वहाँ पे पेन।
2: फंगल
0: जी आपका सवाल समझ नहीं पाए, दोबारा बताएं।
2: ये पूछ रही हूँ मैम कि जैसे डायबिटीज है मुझे, तो
0: ठीक है
2: मुझे डायबिटीज ये जो एंडोमायोसिस के से रिलेटेड है क्या? क्योंकि जब मैडम जब मैं मेरी जो पेशाब की जगह है ना, तो वहाँ पे एकदम जाम जम जाता है, जैसे मैल जमती है ना बॉडी में,
0: जी
2: इस
0: जी
2: टाइप से जमती है। फिर
0: मतलब आप कहना
2: मुझे
0: चाह रहे हैं
2: उसके
0: कि
2: लिए
0: हाँ
2: इचिंग की दवाई लेनी पड़ती है, तब वो फर्क पड़ता है। तो
1: नहीं,
2: और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, मैंने अभी अल्ट्रासाउंड
1: एंडोमेट्रियोसिस से
2: कराया था तो।
1: उससे एंडोमेट्रियोसिस से उसका रिश्ता नहीं है। आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको नीचे में वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है और इचिंग की शिकायत आपको आ सकती है। आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पर अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो वापस आएगा।
0: तो क्या इनको टेस्ट कराने की ज़रूरत है? क्योंकि ये संदेह की स्थिति में लग रही हैं कि डायबिटीज़ की वजह से ऐसा तो नहीं कि आज का जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं इनको भी वो बीमारी हो, क्या कहना चाहेंगे
1: नहीं,
0: मैम?
1: इनके सिम्टम्स पेन के नहीं हैं,
0: ठीक है
1: पर और इनको एक बच्चा हो गया है तो दो जो सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रोसिस के, वो पेन या सब

0: फर्टिलिटी वो दोनों ही नहीं है,
1: जी।
0: चेक कराने में कोई नुकसान नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान इनके अल्ट्रासाउंड हुए होंगे उसमें भी पिकअप नहीं हुआ है, तो अनलाइकली है जो सिम्टम्स हैं वो डायबिटीज़ के ज़्यादा लग रहे हैं।
1: जी, तो सरस्वती जी बिल्कुल फिक्र न करें, मैम ने आपको आश्वस्त कर दिया है कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, बाकी सारी समस्या खुद सुलझ जाएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहबा, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो आपने अभी जानकारी दी, इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगी?
0: टेस्ट मेनली मैंने बताया कि एक अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो डॉक्टर आप देख रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज़ भी मैटर करती है
1: ठीक है।
0: एंडोमेट्रियोसिस में। इन सब के बाद हमें कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है, फिर उसका इलाज उस हिसाब से कि आपकी क्या सिम्टम्स है उसके आधार पर किया जाता है।
1: जी, कोई खास उम्र होती है इस रोग को होने की, या किसी को भी हो सकता है?
0: नहीं, ये किसी को भी हो सकता है,
1: जी।
0: आजकल हम लोग एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी देखते हैं और मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी देखते हैं, यंग एज में तो पर्टिकुलरली ये बहुत ही कॉमन है, तो कोई भी एज इससे परे नहीं।
1: ठीक है। हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। रविंद्र पाठक जी, आशा पाठक जी फ्रॉम नीदरलैंड से इन्होंने लिखा है कि हमारा प्रश्न है, नमस्कार भेजा है डॉक्टर साहिबा
0: जी
1: आपको भी।
0: नमस्कार।
1: जी, फिर ये लिख रहे हैं कि यूट्रस रिमूव करने के बाद किस प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसे खान पान का भी इसमें खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इनका क्वेश्चन है।
0: ये डिपेंड करता है कि आपका यूट्रस किस वजह से रिमूव हुआ था। आपका यूट्रस अगर हेवी ब्लीडिंग के कारण रिमूव हो सकता है, आपका यूट्रस कैंसर के कारण रिमूव हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस वजह से आपका यूट्रस रिमूव हुआ था, सावधानी उसी हिसाब से आपको बरतनी चाहिए। तो वो सब चूंकि डिटेल मेरे पास नहीं है, तो ये कहना कि एग्जैक्ट क्या सावधानी बरतनी होगी ये मेरे लिए मुश्किल होगा, तो बेहतर होगा कि आपके जो नियर बाई डॉक्टर हैं आप उनसे मिलें और अपनी समस्या उनसे बात करें।
1: जी, और हम अपने ऐसे श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी दूर बैठकर कार्यक्रम सुन रहे हैं और क्वेश्चन करके लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत कर रहे हैं, और हमारे जो हम हमारे श्रोता हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज के विषय से जुड़ा तो आप सवाल कर ही सकते हैं, साथ साथ आपको अगर स्त्री रोग से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज की हमारी विशेषज्ञा ममता मिश्रा जी आपको बता रही हैं कि आप कैसे, अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसको आप कैसे निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हमने कहा कि किसी उम्र में भी आपने बताया कि ये रोग
0: जी
1: हो सकता है, तो क्या ये वंशानुगत भी होता है?
0: हाँ, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रोल है। कई बारी देखा गया है कि फैमिली में रन करती है कि अगर मदर को था तो डॉटर को हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। कई बारी पेरेंट्स को नहीं भी होता है तो भी फीमेल्स नाउ ए डेज आर गेटिंग दिस डिजीज़।
1: जी, तो श्रोताओं बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वंशानुगत भी ये रोग हो सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया है, और आपको कारण निवारण सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप उसको किस तरह से निदान पा सकते हैं। अगर रोग की शुरुआत की बात करें मैम, तो किस तरह से माना जाता है कि वजह क्या हो सकती है इसकी?
0: जैसे मैंने बताया कारण एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर अगर यू आर एक्सपोज टू लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आपको ये हो सकता है।
1: जी।
0: प्रिवेंशन का एग्जैक्ट एविडेंस तो नहीं है, बट हेल्दी लाइफस्टाइल है अगर, एक्सरसाइज है अगर, एंड तो उसका रोल है इसमें, ये माना गया है, पर एविडेंस नहीं है कि हम वो करेंगे तो ये नहीं होगा। दूसरा होता है कि अगर आपके अर्ली डायग्नोसिस जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो गई है तो मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं जो हम उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं। डिजीज़ को क्योर तो नहीं कर सकते कम्प्लीटली, बट उसको सप्रेस करके रखा जा सकता है
1: जी
0: फॉर ए लॉन्गर टाइम।
1: जी क्या इसकी वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम ही ये माना जाता है कि अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो क्या ये वजह हो सकती है?
0: एक वजह हो सकती है, पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं और एविडेंस कहता है कि 15-20% ऑफ वुमेन जिनको कि एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज्ड है स्टिल दे कैन कंसीव नेचुरली एज वेल।

0: ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर एक बार एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज हो गया है तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। जिनको भी डायग्नोसिस हुई है, एंडोमेट्रियोसिस के भी कई स्टेजेस होते हैं, माइल्डर होते हैं और सेवियर भी होते हैं।
1: जी
0: नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है इसमें, ये जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली अगर 20% कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये बेहतर होता है कि सारे आप टेस्ट करा लें, और अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एंडोमेट्रियोसिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट इसका इलाज पॉसिबल है।
1: जी हमारे पास आलोका जी का नोएडा से सवाल आया हुआ है कि इनकी बेटी 24 साल की है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के दौरान, और साथ साथ वोमिटिंग भी फील होती है, तो लूज मोशंस भी होते हैं, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
0: नमस्कार आलोका जी। देखिए, अगर आपकी डॉटर्स का कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। ज़रूरी नहीं है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस हो।
1: जी
0: कई बार इसको हम लोग कंजस्टिव डिसमेनोरिया कहते हैं, ये यंग एज में काफ़ी कॉमन है। जब आप एग रिलीज करते हैं जिस साइकिल में, उस साइकिल में आपको पेन हो सकता है, और केवल सिम्टोमेटिक जैसे पेन किलर से भी इसका इलाज हो सकता है।
1: जी
0: बट अगर आप हमारी सलाह मानेंगे तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि कोई और कारण तो नहीं है उनके पेन होने का।
1: जी अल्ट्रासाउंड बताया मैम, और इन्होंने अभी अभी लिखा है कि अल्ट्रासाउंड ठीक आया है इनका, तो क्या कहना चाहेंगी?
0: तब तो अच्छी बात है ये कि अल्ट्रासाउंड ठीक आया, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: तो उनको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो हम लोग देते हैं वो नॉर्मली पेन किलर ही देते हैं, तो आपके नियर बाई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो पीरियड्स के समय ले सकते हैं।
1: जी
0: सेकेंड लाइन थेरेपी होता है अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है, या आपको उससे एलर्जी है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, तो आप सेकेंड लाइन में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं, वो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होते हैं, वो आप कंटिन्यूसली भी ले सकते हैं और नॉर्मली जैसे किस दिन के गैप पे भी ले सकते हैं। तो वो आप ले करके, एंड दैट इज़ वन ऑफ द गुड मेथड टू गेट रिड ऑफ द पेन।
1: जी और ये तत्काल मैसेज करके धन्यवाद भी कर रही हैं, तो आलोका जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं उनके माध्यम से लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि कभी कभी कॉल्स नहीं लगते हैं, लोग करना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप लोगों के जो सवाल हैं उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उनकी समस्या का समाधान उनको मिलता है, तो हमारी ओर से आपको धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं मैम, एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद
0: जी,
1: आगे की
0: थैंक यू।
1: बातें।

0: जी।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, जिनसे आज हम बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि स्त्री रोग से जुड़ी आपकी भी कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। उसके लिए स्टूडियो के नंबर हैं 011-234-21080 और 011-234-21082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: आप मेरे को सुन रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, आपका ही सवाल ले रहे हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: तो ये जो हैबिचुअल अबॉर्शन की जो दिक्कत है, ये किन कारणों से होती है? वाइफ के 5 टाइम।
2: जी सर, अपना नाम बता दें, सवाल तो आपका सुन रही है डॉक्टर साहिबा, अपना शुभ नाम।

0: बता
1: नहीं
0: दें
1: नहीं
0: सर
1: मेरा नाम राजीव
0: जी।
1: रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: तो ये 5 टाइम आफ्टर 3 मंथ जो है हमने एमसी से भी इलाज करा दिया, तो आफ्टर 3 मंथ के बाद ऑपरेशन हो जाता है, कोई रीजन नहीं, प्लाज्मा करेंगे, ये करेंगे, बच्चेदानी का मुंह, हम
0: हम
1: आप 6 महीने आपको
0: आपकी
1: हॉस्पिटल।
0: आवाज कट
1: तो
0: कट के आ रही है सर, आपकी आवाज कट के आ रही है।
1: नहीं,
0: क्वेश्चन दोबारा कर दें और थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाएं सर।
1: हाँ नहीं, अभी तो वर्न हो जाता आफ्टर 3 मंथ, है ना।
0: जी
1: हेलो,
0: जी मैं समझ गई आपके सवाल, नाम मैं नहीं सुन
1: हाँ
0: पाई, नमस्ते। देखिए बहुत सारे कारण हैं और हमारे पास समय इतना नहीं है कि मैं उन सब कारणों को आपको बता पाऊँ, लेकिन अगर आपके बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं तो ज़रूर कुछ टेस्ट आपके भी हुए होंगे और कुछ टेस्ट आपके वाइफ के भी हुए होंगे, और कई बारी हम लोग टेस्ट जो होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी करते हैं। उसके बाद हम लोग एक कारण पे पहुँचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हम आपको कारण बता पाएं। इसीलिए इस अभी तो इसमें चर्चा करना कि क्यों हो जाते हैं कारण, ये तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट हो जाती है और हमें एक एक करके सबको हटाना होता है कि ये नहीं है और ये नहीं है। बेहतर होगा कि अगर आप आकर के एक बार मिल लें। आप कहाँ रहते हैं?
1: में भी दिखा दिया है।
0: कोई बात नहीं, एक बार आकर के अगर मिल
1: नहीं,
0: लें।
1: इसका लास्ट डिसीजन यह है कि बच्चेदानी का मुंह शील्ड करना पड़ेगा।
0: देखिए बिना पेपर देखे बिना कारण जाने मैं आपको कोई भी सलाह इस पे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं दे पाऊंगी। जी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बेहतर
1: सर,
0: होगा
1: हमारे
0: कि
1: लिए भी मुश्किल ही है सर।
0: हाँ मैं समझ गई, मैं कोई आप एक बार आके मिल सकते हैं कहीं पे भी। वसंत कुंज बहुत दूर नहीं है, फोर्टिस में या मेरे क्लिनिक पे, कहीं पे भी आप आके मिल लें तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। थैंक यू
1: थैंक यू सर।
0: जी। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, डॉक्टर साहिबा नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं, आपको नमस्कार भेजा है इन्होंने, साथ ही मुझे भी भेजा है। लिख रहे हैं कि स्त्री परिवार की धुरी होती है, सुबह से रात तक काम करती है परंतु अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती है। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं तो इस नाते आप क्या कहेंगी कि किस तरीके का चेकअप कराते रहना चाहिए महिलाओं को? नमस्ते, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। दो चीज़ें मैं सोचती हूँ मेरे प्रैक्टिस में जो मैं हर किसी को कहना चाहती हूँ ज़रूर कराएं। वो एक है कि आप अपना पैप स्मियर टेस्ट, जो कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए है, सर्वाइकल कैंसर, और ये 5 साल में एक बार ही होता है, इसको पैप डुओ टेस्ट कहते हैं, ये सर्वाइकल कैंसर से आपको बचाता है, ये ज़रूर अपने अपनी वाइफ और आपके घर में जितनी औरतें हैं उनका ज़रूर कराएं। दूसरा जो होता है उनको एनुअली डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के लिए भी चेक कराएं, और तीसरा है एक फ्लू वैक्सीनेशन मैं रिकमेंड करती हूँ ताकि वो डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मली कर सकें। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द एज, ब्रेस्ट चेकअप के लिए मैमोग्राम इज़ रिकमेंडेड, पर ये 50 के ऊपर की है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो कर सकते हैं सो दैट अगर ब्रेस्ट कैंसर आता है तो उसको वो जल्दी पकड़ सकते हैं। जी ये मिनिमम है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं बट ये बहुत ज़रूरी है, और फिज़िकली एक्टिव रहना दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जी हमारे पास मैसेज आया हुआ है प्रिंसी जैन जी का, इन्होंने लिखा है, कहाँ से भेजा है ये मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं लिखा है शायद इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 30 वर्ष की है और लिख रही है कि पीरियड के दौरान इनको पेन होता है, साथ साथ जब ये मॉर्निंग में यूरिन पास करती हैं तो ब्लड भी आता है, ऐसा इनके साथ रेगुलर चल रहा है। क्या समस्या हो सकती है, किस तरीके का इनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? मेरे लिए जानना ज़रूरी है प्रिंसी कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके बच्चे हुए हैं, या आपकी सर्जरी कोई हो रखी है या नहीं। इस आधार पे हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं आपको। पहला चीज़ है यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करना, जिसमें यूरिन रूटीन और कल्चर टेस्ट होता है जो यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करेगा, जी और दूसरा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि यूट्रस में कोई लम्प बम्प है कि नहीं, जो कि जिसके कारण आपको ये तकलीफ़ या परेशानी हो रही हो। जी डीएसए भी इन्होंने लिखा है कि डीएसए भी हुआ है और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ही हैं इनके लिए। हाँ बट ये जैसे मैंने कहा कि इतने शॉर्ट टाइम में हम आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, बट बेसिकली जो आपकी समस्या है वो पेनफुल पीरियड्स है एंड ब्लड इन द यूरिन है। इसके लिए पहले हमें मैंने जैसे एंडोमेट्रियोसिस अगर रूल आउट करना है तो अल्ट्रासाउंड और

0: MRI बनता है और साथ में किडनी का इवेल्युएशन भी बनता है विथ यूरिन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड किडनी के अलावा। ये सब चीज़ों के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट हो सकता है।
1: मैम, अगर उम्र की बात करें तो अगर किसी 17 वर्ष की बच्ची को एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है तो उसका क्या इलाज होगा, या उससे बड़े किसी उम्र की महिला को है तो क्या इलाज अलग अलग होता है?
0: हाँ, इलाज का जो हम इलाज जब करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं, पहला वेरिएबल होता है एज कि क्या एज है, दूसरा होता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, पेन अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग पीरियड्स, आफ्टर पीरियड पेन, ड्यूरिंग सेक्स, ये सब चीज़ें हम इवेल्युएट करते हैं।
1: जी,
0: फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं और MRI की ज़रूरत पड़ती है तो कराते हैं। नाउ जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिम्टम्स पेशेंट्स आर हैविंग वी गो फॉर इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट।
1: जी
0: मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम दवाइयों से उनकी इलाज करने की कोशिश करें। तो दवाइयों में पहला होता है पेन किलर। अगर उनका पेन बहुत सिवियर नहीं है और एंडोमेट्रियोसिस माइल्ड है तो हम लोग सिर्फ पेन किलर से भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि एक हार्मोनल थेरेपी जिसे कहा जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कहते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं
1: जी
0: या प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स आती हैं, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जैसे आपने मेरे से पूछा कि 17 साल की है और सिस्ट है, सिस्ट का साइज हमें ये बताता है कि इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट हो सकता है। सिस्ट के बावजूद भी हम लोग मेडिकली उसको मैनेज कर सकते हैं अगर सिस्ट साइज स्मॉल है तो। मेडिकल मैनेजमेंट में बस ये
1: जी
0: है
1: मैम,
0: कि
1: इस पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं
0: जी
1: उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: मेरा नाम सुषमा है।
1: सुषमा जी, कहाँ से बोल रही हैं?
2: ये दिल्ली से बोल रहे हैं।
1: जी बताएं, क्या सवाल है आपका?
2: ये किसी सब बच्चा हो सकता है? एक बच्चा है हमारे पास, वो 5 साल का है, दूसरा बच्चा बहू के लिए सोच रही है।
1: अच्छा, आप अपनी बहू के लिए सवाल कर रही हैं,
2: हाँ जी।
1: तो क्या कहना चाहेंगी आप मैम?
0: वो कोशिश कर रहे हैं बच्चे होने के लिए और बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसी कोई
2: नहीं
0: हालत?
2: आज अभी कोशिश तो नहीं कर रहे।
0: तो फिर उनको कोशिश कर लेने दीजिए,
2: थोड़ी
0: हमारी ज़रूरत तो तब पड़ेगी जब वो कोशिश करें और सक्षम ना हो पाए।
1: जी,
2: अच्छा, 40 होंगे, 40।
0: 40 साल में भी बच्चे होते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए।
2: अच्छा जी,
0: हो जब तक पीरियड्स आते हैं तब तक बच्चे हो सकते हैं
2: ठीक है
0: और हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं।
1: जी। तो ये घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, उस नाते इन्होंने ये सवाल कर लिया और मैम ने आपका समाधान भी कर दिया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि उम्र के अनुसार जिस तरीके के ट्रीटमेंट आप बता रहे थे, क्या कहेंगे?
0: जी, तो मेडिकल मैनेजमेंट भी अगर सिस्ट साइज स्मॉल है तो हो सकता है। एडोलेसेंट में प्रेफर करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, अगेन देर आर मेनी वेरिएबल्स जैसे मैंने कहा, और लेकिन उसमें फिर आपको लॉन्ग टर्म फॉलोअप में भी रहना होता है। इस बीमारी के साथ यही है कि लंबी बीमारी है, आपको अगर सर्जरी भी होती है, मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है तो भी रिकरेंस का रिस्क रहता है, तो आपको हमेशा आपको फॉलोअप में रहना पड़ता है।
1: तो क्या सर्जरी ही एक विकल्प है मैम, या फिर मेडिसिन के जरिए भी बीमारी ठीक हो सकती है?
0: बीमारी को हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं मेडिसिन के द्वारा। सर्जरी भी करना पड़ता है कई केसेस में, मैंने जैसे कहा कि मान लीजिए अगर उनको सीवियर पेन है, स्टेज इंडोमेट्रोसिस का स्टेज 3-4 है, कई बार 1-2 में भी करना पड़ता है। सिस्ट का साइज काफ़ी बड़ा है, अगर कट ऑफ हमारे लिए 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट का सिम्टम्स और उसके क्या चॉइसेस हैं।
1: जी
0: जब अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें सारे ऑप्शंस देते हैं, मेडिकल सर्जिकल, और उनकी सुविधा अनुसार जो उनके लिए बेस्ट अप्रोच होता है फिर हम लोग वही निर्धारित करते हैं।
1: डॉक्टर साहिबा, हमारे एक श्रोता हैं श्याम मित्तल जी, रोहिणी से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 74 वर्ष की है और इन्होंने सवाल तो नहीं भेजा है लेकिन प्रोग्राम की तारीफ की है, लिख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज रेडियो डॉक्टर के माध्यम से जो फीमेल्स हैं वो खुद आज बातचीत कर रही हैं और उनके कॉल्स आ रहे हैं, साथ साथ ये बधाई दे रहे हैं यहाँ पे शालिनी मैम को, मुझे और डॉक्टर साहिबा आपको भी, कि
0: जी
1: इतने
0: धन्यवाद।
1: अच्छे विषय पर आज आप चर्चा लेकर आए हैं।

0: हैं, तो इन्होंने उसके लिए हमें बधाई दी है। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारी जो आप तारीफ करते हैं उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने कोई सवाल भी भेजें तो और भी अच्छा रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर अपना शुभ नाम बताएं। हेलो
1: हेलो।
0: जी मैम, बताएं क्या सवाल है आपका, पहले नाम बता दें अपना।
1: हाँ जी नमस्ते मैम, मैं प्रभ पंजाब से बोल रही हूँ।
0: जी
1: हाँ जी मैम, मैं अपनी फ्रेंड के बारे पूछना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल पूछ लीजिए, लेकिन नाम नहीं बताया हमने आपसे, नाम बताने का आग्रह किया था पहले।
1: मैं प्रभ प्रभ बोल रही हूँ सर।
0: ओके ठीक है, बताइए मैम क्या सवाल है आपका।
1: मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड है, वो हॉस्टल में है, बल्कि उसकी शादी को 7 साल हो गए मैम, पर उसके ना बच्चा नहीं ठहरता है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती मैम।
0: ठीक है
1: हाँ जी, तो
0: जी।
1: वो जब मतलब कि थोड़ा टाइम होता है, जब प्रेगनेंसी होती 2 बार उसका इससे केस की खराब हो जाता है।
2: जी ये सवाल पहले भी आया था, जिन्होंने एम से पूछा था कि उनके 5 बार खराब हो गए हैं। इसके कई कारण होते हैं, और
1: हाँ
2: जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो कारणों को उनके बारे में पता लगाते हैं। कई बार क्या होता है, 2-3 मिसकैरेजेस के बाद भी आपकी संभावना नेचुरली प्रेग्नेंट होने की काफ़ी होती है, तो इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सही इलाज से आप कंसीव कर सकते हैं। ये उन्हें हिम्मत देने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में आदमी काफ़ी निराश हो जाते हैं और ये निराशा ही कई बार प्रेगनेंसी नहीं होने देती है।
1: मैम, वो बहुत टेंशन में रहती है
2: हाँ,
1: बच्चे।
2: ये उनको ये कहना होगा कि अगर आपके एक बार बच्चा खराब होता है तो 90% चांस है कि आप दोबारा आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपका 2 बार बच्चा ख़राब होता है तो भी आपके 85% चांसेस हैं कि आप आराम से प्रेग्नेंट हो करके आपके नॉर्मल बच्चा हो सकता है। पर इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सही इलाज की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मुझे ये बताना कि क्यों हो रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है। आप नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप मिल सकते हैं, कारणों के बारे में जान सकते हैं, और हिम्मत रखेंगे तो ज़रूर कुछ ही दिनों में आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी।
0: जी, और आपने बात की मैम कि खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए संगीत भी बड़ा ज़रूरी होता है, तो क्यों ना एक म्यूज़िकल ब्रेक ले
2: जी
0: लिया जाए
2: थैंक
0: यहाँ
2: यू।
0: पर।

0: हाँ, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी लेकर आप अपने आशियाने में खुश रह सके, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ साथ महिलाएं अगर स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, ये कोई बात ऐसी नहीं है जो कोई ना समझ सके। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस पर, किस तरह की यह बीमारी और कैसे आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर तमाम जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर ममता मिश्रा जी। मैम, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो कितने लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है? क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले रोगी के मन में ये सवाल होता है कि क्या सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ेगी या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
1: ये एक लंबी बीमारी है। इसमें आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको दवाइयाँ लंबी चलें या ना चलें,
0: जी
1: आपको दवाइयों की ज़रूरत है या आपको सर्जरी की ज़रूरत है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट एक चीज़ तो है कि आपको फॉलोअप में कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा। फॉलोअप में रहना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम इसको, अगर रिकरेंस होता है, दोबारा ये बनता है, तो हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं और मेडिकली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसका चलता है और ये तब तक चलता है मोस्टली जब तक कि आपके पीरियड्स बंद नहीं हो जाते हैं।
0: जी,
1: तो अगर आपके जो रिप्रोडक्टिव एज टाइम है, जिस समय आपके पीरियड्स शुरू हुए और जब तक वो ख़त्म नहीं होते हैं, किस एज में आपकी डायग्नोसिस होती है, मान लीजिए किसी की डायग्नोसिस ही 45 में हुई है, तो उसका इलाज बहुत लंबा नहीं चल सकता है, पर किसी के अगर 16 ईयर्स में डायग्नोसिस हुई है तो हो सकता है उसका इलाज लंबा चले, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है।
0: तो ये क्या सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही होने वाली डिजीज है, ऐसा कह सकते हैं?
1: हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि मेनली जो कारण होता है इसका, ये पीरियड्स से ही रिलेटेड होता है। जो हम लाइनिंग पीरियड्स के समय शेड करते हैं,
0: जी,
1: जब आपके हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो वही लाइनिंग आपके बच्चेदानी के आसपास की जो जगह हैं वहाँ पे ये पनपती हैं आपके हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से, इसी की वजह से ये बीमारी पनपती है।
0: मैम, आजकल जो देखा जाता है कि बहुत अब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पहले भी लोगों को मालूम था लेकिन इतना लोग नहीं करते थे, अब खास करके योग की तरफ लोग दोबारा आकर्षित हो रहे हैं। क्या व्यायाम से और योग से इस बीमारी पर कोई असर पड़ेगा और खान पान बदला जाए, प्राकृतिक रूप से जुड़ा जाए?
1: इस पर काफ़ी जगह चर्चा होती है, पर अगर साइंटिफिक एविडेंस कहें तो हमारे पास बहुत नहीं है। हैविंग सेड दैट, इट इज़ ऑलवेज इनकरेज टू हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल विच इंक्लूड्स लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। ये तो बिल्कुल ही करना चाहिए। इस बीमारी पे कितना इम्पैक्ट है ये कहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बहुत विशेष चर्चा के दौरान बता रहे हैं कि आपके जीवन में अगर कोई भी स्त्री रोग से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय अब हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा समय है, अगर आपका भी कोई सवाल है तो हम तक तुरंत पहुँचाएं। स्टूडियो के नंबर से 01123421080, 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो मैम, एक म्यूज़िकल ब्रेक और बनता है, यहाँ लेते हैं।
1: थैंक यू।

0: मैम हमारे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं राधा गुप्ता बोल रही हूँ दिल्ली से।
0: जी आपका स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका।
1: मैम मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं सेकेंड डिलीवरी, तो
0: जी
1: मैम जैसे मेरे पीरियड्स में के दौरान पेन होता है, तो मैम इस टाइम भी मुझे ये बीमारी हो सकती है इस टाइम पे भी? और मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोपर्टी सेकेंड डिलीवरी के बाद कोपर्टी लगवा ली थी, तो मैम 10 इयर्स होने वाले हैं, तो उसके बाद निकाल सकते हैं कि मतलब उससे पहले निकलवा लेना चाहिए? जैसे अप्रैल में मैम होने वाले हैं 10 ईयर, तो उससे पहले निकालना चाहिए कि बाद में 1-2 महीने का डिले भी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछूं मैम से।
2: पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम्हें पेन जो हो रहे हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हैं या कोई और कारण भी हो सकता है।
1: हाँ जी मैम,
2: तुम्हारे जो ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या नॉर्मल
1: यस
2: डिलीवरी?
1: मैम, पहली डिलीवरी मेरी नॉर्मल है, सेकंड डिलीवरी से हुआ है।
2: तो पेन तुम्हें पहले डिलीवरी के बाद शुरू हुआ या पेन तुम्हें सेकेंड डिलीवरी के बाद शुरू हुआ?
1: मैम मैम ये मैम शुरू से ही मैम पीरियड्स के दौरान मैम होता ही है।
2: तो बेस्ट होगा कि पहले तुम अल्ट्रासाउंड करा करके देख लो, इसके इससे रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है। एंडोमेट्रोसिस एक कारण हो सकता है, कई बारी सर्जरी के कारण भी ऑर्गेन आपस में चिपक जाते हैं जिसे हम एडहेशंस कहते हैं, इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और पेन के और भी कई कारण हो सकते हैं, वो हमें इवेलुएट करना पड़ेगा, बट सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एंडोमेट्रोसिस है इसी वजह से तुम्हें अभी ये पेन हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस अगर होता है तो कई बार लोगों को बच्चे होने में भी दिक्कत आती है, और तुम्हारे 2 बच्चे हो चुके हैं तो मोस्ट लाइकली कोई और भी कारण हो सकता है पेन का, जो हमें इवेल्युएशन के बाद पता लगेगा।
0: दूसरा भी इनका सवाल था।
2: दूसरा सवाल था कॉपर्टी के
0: जी
2: लेकर के, जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसमें से कॉपर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो बेहतर होता है कि आप उसको उसी समय निकलवा लें। डिले करने से उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी नहीं रह जाती है,
0: जी
2: तो इससे बेहतर होगा कि आप टाइम पे ही उसको निकलवा लें।
0: ये पेन कहीं उसकी वजह से ही तो इनको नहीं है, ऐसा कहा
2: नहीं,
0: जा
2: मैंने
0: सकता
2: जैसे
0: है?
2: कहा कि 10 साल से है इनको कॉपर्टी, इन्होंने लगा रखा
0: ठीक है।
2: है, अगर इतना सीवियर पेन होता तो शायद ये अब तक निकलवा चुकी होती। ये इवेलुएट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि पेन का कारण क्या है, तभी हम उस पर एड्रेस कर सकते हैं, पर एंडोमेट्रोसिस एक कारण हो सकता है विच इज़ वेरी अनलाइकली। दो
0: ठीक। टीना जी पंजाब से हमें सवाल भेज रही हैं कि सिस्ट होने का रीजन क्या होता है ओवरीज में?
2: ओवरीज में सिस्ट

0: बहुत तरह से बनते हैं। कुछ सिस्ट में जो बनते हैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो नॉर्मली नेचुरली बनते हैं, बहुत सारे औरतों को बनते हैं और उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टीना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा सिस्ट कौन से प्रकार का है, उसके आधार पे ही हम लोग बता सकते हैं कि ये नेचुरल है या इसके लिए तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। हम जो इस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस, वो भी एक तरह से सिस्ट बनाता है। उस सिस्ट के अंदर, सिस्ट मतलब होता है बैलून, जिसके पतला बैलून जिसके अंदर पानी भरा हो, जब उसके अंदर ब्लड भर जाता है तो उसे हमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। तो जैसे सिस्ट के बहुत प्रकार होते हैं, तुम्हारे अगर तुम्हें हैं या तुम्हारे परिवार में किसी को है तो उस प्रकार के तहत हमें निर्धारित करेंगे कि उसे इलाज की ज़रूरत है या नहीं है।
1: जी, तो मैम एक आखिरी सवाल के मेडिकल अन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं चलते चलते।
0: जी, ये मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट जो होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, पहले हम मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल में बहुत तरह की मेडिसिन आती हैं जो हम सिम्टम्स के आधार पर तय करते हैं और साइड इफ़ेक्ट के आधार पर तय करते हैं,
1: जी
0: और एक जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है एज ऑफ द पेशेंट। तो कोई भी मेडिसिन जो होता है, जैसे आते हैं पेन किलर आता है फर्स्ट लाइन, दूसरा जो होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तीसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, और दो तरह के इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम देते हैं एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को। मोस्टली ये इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आपकी डिजीज़ माइल्ड है, या मॉडरेट में भी दिया जाता है और सिस्ट साइज स्मॉल है, या आपकी सर्जरी हो चुकी है उसके बाद हम रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं।
1: जी
0: सर्जिकल मैनेजमेंट में कई बार बहुत तरह की सर्जरी होती है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व हैं और आपकी उम्र कितनी है और आपके सिम्टम्स पेन है या सब फर्टिलिटी है। अगर सिस्ट है तो सिस्ट को निकाला जा जाता है, और बाकी अगर अडेशंस हैं तो उनको छुड़ाया जाता है सर्जरी के दौरान, और उस पोस्ट ऑपरेटिवली फिर हम लोग उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे डाल देते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमने चर्चा की एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। उम्मीद है कि आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। आज हमारी विशेषज्ञ थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली से संबद्ध हैं। तो कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इस उम्मीद के साथ अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए इजाज़त। उसके पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो
1: नमस्कार।
0: लॉट।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा ने केरल विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए। विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज के बाद आज भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया।

महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु हो गई और दो घायल हो गए हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोकसभा में सरकार ने बताया है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की ईगा स्वाइटेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 4 बज चुके हैं बाय द स्टूडियो क्लॉक, 4:03 का समय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। और अब वक्त हो चला है अल्फा जेन का, जहां बात होती है करियर की, अपॉर्चुनिटीज की और उस फ्यूचर की जिसे आप आज अपने डिसीजन से शेप कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कि अगर डिग्री मिल गई तो अब जॉब मिलेगी या नहीं। एक टाइम था जब हमारे घरों में करियर का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, डिग्री कंप्लीट कर लो और फिर एक अच्छी नौकरी। लेकिन आज पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। कंपनीज क्वालिफिकेशन तो देख रही हैं, लेकिन साथ में ये भी पूछ रही हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कैन यू कम्युनिकेट, कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कैन यू वर्क विद अ टीम, कैन यू लर्न समथिंग न्यू क्विकली, और जो पढ़ा है क्या उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं। तो आज अल्फा जेन में बात होगी डिग्री वर्सेस स्किल्स की। आज के जॉब मार्केट में एक्चुअली मैटर क्या करता है। अगला गाना बस एक ही चीज कहता है बार बार, कुछ भी हो जाए बस फिकर नॉट।

कुछ भी हो जाए, फिकर नॉट, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन आकाशवाणी FM रेनबो पर। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज्योतिका तो कह रही है कि डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना, मेरा ये मतलब नहीं है। डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर, रिसर्चर, प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेशंस में फॉर्मल एजुकेशन फंडामेंटल तो है, और बाकी करियर्स में भी डिग्री आपको नॉलेज, डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। प्रॉब्लम डिग्री में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिग्री को अपनी फिनिश लाइन समझ लेते हैं। कॉलेज ने आपको क्या पढ़ाया, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपने कॉलेज के बाहर क्या सीखा, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। सो इमेजिन, दो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए हैं, दोनों के पास सेम डिग्री है और सेम मार्क्स भी आए हैं। एक के सीवी पर सिर्फ क्वालिफिकेशन है, लेकिन दूसरे ने इंटर्नशिप्स की हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रेजेंटेशंस दी हैं और एक दो यूजफुल टूल्स भी सीखे हैं। अब अगर आप एम्प्लॉयर होते तो आप किसको चूज करते, आप किसको हायर करते अपनी कंपनी के लिए, सोचिए सोचिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरा ठाते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं? इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और ये है अल्फा जेन. देखिए, स्कूल और कॉलेज में

हमने एक चीज को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी। एनी गेसेस? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं परसेंटेज की। हमने परसेंटेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। कितने आए हैं? 80, 90 या 95? लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट बदल जाता है बॉस। वहां क्वेश्चंस अलग होते हैं। डेडलाइन हैंडल कर सकते हो, टीम में काम कर सकते हो, या क्लाइंट के सामने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सकते हो या नहीं। प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। मार्क्स अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट तो होते हैं, देखिए, दे शो कंसिस्टेंसी एंड सब्जेक्ट नॉलेज, लेकिन मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी की पूरी कहानी नहीं बताते। इसीलिए अगर आप एवरेज स्कोरर रहे हैं तो अपने करियर को एवरेज डिक्लेयर मत कर दीजिएगा। आपकी नेक्स्ट स्किल, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट इंटर्नशिप डायरेक्शन चेंज कर सकती है, बिकॉज करियर में अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। एक टर्म आपने जरूर सुना होगा, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट। नाम सॉफ्ट है लेकिन करियर पर इम्पैक्ट काफी सॉलिड है। इमेजिन आप ब्रिलियंट हो टेक्निकली लेकिन इंटरव्यू में अपना आइडिया एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, या नॉलेज तो आपको बहुत है लेकिन फीडबैक एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये स्किल्स ना सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं होती, कल जब आप किसी टीम को लीड करेंगे, क्लाइंट हैंडल करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे या अपनी वर्क प्लेस में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज करेंगे, वहां आपकी डिग्री से पहले

आपका टेम्परमेंट और कम्युनिकेशन काम आएगा। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करिए आज। अपने किसी दोस्त से पूछिए, मेरी कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी और सबसे खराब, या आप कह सकते हैं वीक, क्या क्या ऐसी चीज है? हो सकता है आंसर आपको सरप्राइज कर दे, क्योंकि समटाइम्स करियर ग्रोथ स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस। कई बार होता है कि हमें खुद के ही बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है जितनी अच्छी जानकारी आपके दोस्त को होती है। देखिए, नॉलेज आपको इंटरव्यू रूम तक तो पहुंचा सकती है, बट हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट एंड वर्क विद पीपल कैन इन्फ्लुएंस व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। तो अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपनी पीपल स्किल्स पर भी काम आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि हम तो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या सच्ची में जानते हैं?

चलिए आज अल्फा जेन में एक क्लासिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फ्रेशर कहता है कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए जॉब भी तो चाहिए। हर कोई आजकल बड़ा कंफ्यूज्ड सा रहता है। तो शुरू करें तो कहां से करें? देखिए, आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इंटर्नशिप करिए, कॉलेज का प्रोजेक्ट करिए, फ्रीलांस असाइनमेंट करिए, वॉलंटियरिंग, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, किसी लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया हैंडल कर लीजिए, कोडिंग करते हैं तो अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर लीजिए, डिजाइनिंग करते हैं तो सैंपल पोर्टफोलियो बनाएं, और प्लीज स्मॉल अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत करिए क्योंकि वो सीवी पर ग्लैमरस नहीं लगती। कभी कभी एक छोटी इंटर्नशिप में आप वो सीख जाते हैं जो क्लासरूम के पूरे सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं सीख पाते। आपने किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसी डेडलाइन को मीट किया, किसी कस्टमर को डील किया, वो एक्सपीरियंस कहलाता है। और जब इंटरव्यू में पूछा जाए, टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू हैंडल्ड, तब आपके पास सिर्फ थियोरेटिकल आंसर

नहीं होगा, एक रियल कहानी होगी। सीवी पर तो सब कहते हैं आई नो दिस, लेकिन उसके बाद ये कहना कि आई हैव डन दिस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। छोटी बिगनिंग को अंडरस्टैंड, मतलब पार्डन मी, छोटी बिगनिंग को अंडरस्टैंड करिए, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। समटाइम्स द स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकम्स योर एंट्री पॉइंट टू अ वेरी वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी।

वैसे जब जब मैं ये गाना सुनती हूँ मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, कॉलेज के फेस्ट याद आ जाते हैं, और जब कॉलेज के फेस्ट की बात होती है तो ये भी लगता है कि जब इंडिपेंडेंस डे आ रहा होता है तो हर जगह एक अलग ही माहौल, अलग ही सेलिब्रेशन होता है। दोस्तों 15 अगस्त अब बस कुछ ही दिन दूर है और जैसे जैसे इंडिपेंडेंस डे करीब आ रहा है वैसे वैसे हवा में एक अलग ही एहसास घुलने लगा है, अपने तिरंगे का, अपनी मिट्टी का और उन वीरों का, उनके बलिदान का, जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं। आजादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है, और कभी कभी कुछ जज्बात लफ्जों से नहीं सुरों से बयां होते हैं। तो आज 11 अगस्त की इस खूबसूरत शाम में चलिए उन्हीं जज्बातों को महसूस करते हैं, एक ऐसे गीत के साथ जो देश से मोहब्बत को सिर्फ गाता नहीं दिल में उतार सा देता है। आकाशवाणी FM रेनबो पर अब पेश है केसरी का ये ब्यूटीफुल ट्रैक, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए और दिल से सुनिएगा। ये गीत है उनके नाम जो अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर गए।

रोंगटे खड़े कर देने वाला ये बेहतरीन गाना बी परा की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी केसरी। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और अब मैं अल्फा जैन में कुछ बात पेरेंट्स से करना चाहूँगी। जो जो पेरेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं ये बात आपके लिए है। देखिए, हम नेचुरली अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी तो चाहते ही हैं। इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम तो ट्राई करो, कुछ स्टेबल चूज करो। कंसर्न देखिए आपका बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन करियर लैंडस्केप रैपिडली ना चेंज हो रहा है। आज ऐसे करियर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में शायद 10-15 साल पहले हमने सुना भी नहीं था। और एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि हर बच्चा जो मैथ्स में अच्छा है जरूरी नहीं इंजीनियर बन पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जो बोलने में अच्छा है उसके उसका जो करियर सिर्फ ट्रेडिशनल प्रोफेशन तक लिमिटेड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कभी कभी हम बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको देख नहीं पाते, लेकिन उस स्ट्रेंथ से जुड़े कई नए करियर ऑप्शंस उनको एडवाइस कर सकते हैं किसी से सुन के, कहीं पे पढ़कर। इसीलिए परहैप्स पेरेंट्स और यंगस्टर्स दोनों को एक दूसरे से बात करना बड़ा जरूरी है। एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ चेंजिंग वर्ल्ड की अवेयरनेस। इसीलिए बच्चे से सिर्फ ये मत पूछिए कि आप कौन सी डिग्री करोगे, या कभी ये भी पूछकर देखिए तुम किस चीज में जेन्युइनली अच्छे हो और उस स्किल को करियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्री चूज करने में गाइड जरूर कीजिए, लेकिन स्किल डिस्कवर करने की उनको थोड़ी सी स्पेस भी देना बड़ा जरूरी है।

देखिए, आज एक स्टूडेंट के पास एडवांटेज है जो शायद प्रीवियस जनरेशन के पास इतनी इजीली अवेलेबल बिल्कुल नहीं थी, और वो है एक्सेस टू लर्निंग। आपके फोन पर कोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, पॉडकास्ट हैं और केस स्टडीज भी हैं। फोटोग्राफी सीखनी है तो पॉसिबल है, एक्सेल कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, लेकिन एक कैच जरूर है यहाँ। देखो, कंटेंट कंज्यूम करना और स्किल डेवलप करना सेम चीज नहीं है। आपने गिटार बजाने के 50 ट्यूटोरियल्स देख लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिटार प्ले करना आ गया, है ना? करियर स्किल्स के साथ भी एग्जैक्टली यही है। सिर्फ

सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहना और रेस में लगे रहना आपको क्या देगा? एक सर्टिफिकेट से ज्यादा पावरफुल वो प्रोजेक्ट है जिसे आप इंटरव्यू में खोल कर दिखा सकें। एम्प्लॉयर्स को बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं। उसके बजाय आप उन्हें शो करिए समथिंग यू क्रिएटेड। बताइए नहीं कि यू कैन कोड, शो देम व्हाट यू बिल्ट। 100 वीडियोस देखने से बेटर है 10 देखो और फिर अपना कुछ बनाओ। लर्न, प्रैक्टिस, क्रिएट, इंप्रूव। देखो, फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल नहीं है, सही यूज करेंगे तो करियर बिल्डिंग टूल भी बन सकता है ये। सूरज

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ

आप सुन रहे हैं अल्फा जन, वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ज्योतिका, पर मुझे तो पता ही नहीं कि मैं किस चीज में गुड हूं, तो क्या करें। देखिए, वो भी एकदम परफेक्टली ओके है। स्किल आसान से अनाउंसमेंट करके नहीं आती है कि अचानक आपने प्रे किया और आसमान से वो टपक के नीचे आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ट्राई करने से डिस्कवर होती है। इंटर्नशिप कीजिए, कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, राइट डिज़ाइन, सेल समथिंग, कुछ बेचिए, वॉलंटियर करिए, स्टेज पे जाके बातें करिए, बिल्ड समथिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ पहली बार ट्राई करके अच्छी ना लगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बुरे हैं। स्किल और इंटरेस्ट दोनों को डेवलप होने में टाइम लगता है। अपने आप को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दीजिए। हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो, इट्स ओके, पर सक्सेस हो भी सकता है ना। समटाइम्स डिस्कवरिंग इज बेटर। ये मेरे लिए नहीं है कहना बहुत जल्दी हो जाता है। ऑब्जर्व कीजिए किस काम में आप नेचुरली क्यूरियस रहते हैं, किस काम के लिए लोग आपके पास आकर आपसे मदद मांगते हैं, किस काम को करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। इन छोटे छोटे क्लूज में कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ छुपी होती है। करियर क्लैरिटी कभी कभी सोचते रहने से नहीं, डूइंग से आती है, करने से आती है।

देखिए, अब एक सवाल का आंसर देने का वक्त आ चुका है। डिग्री वर्सेस स्किल्स का विजेता कौन है? जी हाँ, हु इज द विनर, डिग्री या स्किल्स? देखिए, मेरे हिसाब से ये कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, डिग्री प्लस स्किल्स होना चाहिए।

gives you a foundation, skills make that foundation usable. और practical exposure उस skill को credibility देता है. So suppose आप BCom कर रहे हैं, degree के साथ Excel, financial analysis या communication पर काम कीजिए. Engineering कर रहे हैं तो projects और internships add कीजिए. Media पढ़ रहे हैं तो portfolio build कीजिए. मतलब बहुत ही simple सी बात है, अपनी degree के around एक skill का ecosystem create कर लीजिए. हर 6 महीने में खुद से पूछिए, मेरी क्वालिफिकेशन तो सेम है लेकिन मेरी कैपेबिलिटी में क्या नया ऐड हुआ है. क्योंकि अल्टीमेटली सीवी में डिग्री तो एक लाइन हो गई लेकिन आपकी स्किल्स पूरी कॉन्वर्सेशन बन सकती है. तो अपनी डिग्री को छोटा मत समझिए और सिर्फ डिग्री के भरोसे भी मत बैठिए. क्वालिफिकेशन दरवाजा दिखा सकती है दोस्त, स्किल आपको उस दरवाजे के पार ले जाने में हेल्प करेगी.

और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के अल्फा जेन को रैप अप करने का। आज अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन से आप सिर्फ एक थॉट लेकर जाएं तो वो ये हो कि अपनी डिग्री पर प्राउड रहिए, लेकिन अपनी लर्निंग को डिग्री के साथ खत्म मत करिए। करियर एक सर्टिफिकेट नहीं है जो एक बार मिल गया तो काम खत्म। करियर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड ग्रोइंग। और अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो वेट मत कीजिए कि डिग्री कंप्लीट होगी तब करियर स्टार्ट होगा। आपका करियर प्रेपरेशन आज से ही स्टार्ट हो सकता है। एक स्किल चूज कर लीजिए, उस पर अगले 30 दिनों तक काम करें। एक प्रोजेक्ट बनाइए, किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, एक इंटर्नशिप एक्सप्लोर करिए। छोटा सा स्टेप, बट टेक दैट स्टेप। हर कुछ महीनों में खुद से पूछिए, मैं आज क्या जानता हूं जो मैं पिछले 6 महीनों में नहीं जानता था।

मैं अपने सीवी में सिर्फ एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ या एक्चुअली अपने अंदर एक नई कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा हूँ? क्योंकि दुनिया चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जॉब्स चेंज होंगी, लेकिन जिस इंसान ने सीखना और सीखना शुरू कर दिया, उसके लिए नए रास्ते हमेशा अपने आप खुलते रहेंगे। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका, आपसे इजाजत लेती हूं। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और अपने करियर की स्टेयरिंग किसी और के हाथ में मत दीजिए, अपने हाथ में रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। और जाते जाते एक गाना उन सभी ड्रीमर्स के नाम जो अपनी मंजिल की तरफ अभी भी चले जा रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और उसके स्थिति पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई भी तथ्यों को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता जारी है और इसकी प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना भारत की प्राथमिकता है। श्रीलंका और भूटान के साथ रिश्ते और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स आउटरीच सत्र का निमंत्रण दिया गया है। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में अधिकार

0: के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रूपये के इनामी माओवादी सलूका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्री अनुरंजन ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Lok Sabha today passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The lower house also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET matter. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. After passing the bill, the House took out special mention in

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে বিশাল শৰ্মা। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा।

0: श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Earlier in the day, the upper house witnessed continuous uproar over various issues, including alleged police action during students' protests over the NEET matter. Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The Lok Sabha has also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress and opposition parties of running away from a discussion on the students' protest, saying that the government is ready for a detailed discussion on the issue. Speaking to reporters at Parliament premises, Mr. Rijiju said Home Minister Amit Shah was also ready to respond to the issues raised by the opposition, but they are not allowing the House to function. Meanwhile, Congress MP Pawan Khera alleged that the Home Minister was avoiding making a statement on the matter. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, the maintenance of peace and tranquility in these areas is

0: अभियुक्तः। षष्ट्यधिकजनानां हत्यां सहैव पञ्चशतोप्यधिकजनानाम् आघातमधिकृत्य पाकिस्तानी दूतावासानां पुरतः प्रदर्शनस्य योजना अस्ति। नासासंस्थया चन्द्राधारकार्यक्रमे इसरो संस्था सहभागी भवितुम् आमन्त्रिता। बेंगलुरुनगरे भारत अमेरिका अंतरिक्ष कार्यदलस्य नवम्यां गोष्ठ्यां इसरो अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणन तथा अमेरिकीय राजदूतः सर्गियो गोरः भागम् अगृह्णीताम्। अवसरे निसार अभियानस्य सफलतायाः अनन्तरम् आगामी मानव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीषु परस्पर सहयोगस्य विस्तारः स्वीकृतः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु द्वित्रिदिवसेषु ओडिशा राज्ये वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतीव तीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेन तावत् आगामि दिनद्वयोः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे अरुणाचल प्रदेशे असमे मेघालये नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राजस्थानेषु च वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतितीव्रतर वृष्टिः भविष्यतीत्यपि अनुमानितम्। कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगितायां पोलैंड देशस्य पूर्व विश्व प्रथम वरीया ईगा स्वीटेक रशिया देशस्य डायना श्नाइडर इत्येतां 6-2, 6-1 इति अंकैः केवलं चतुष्षष्टि निमेषेषु पराजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।
1: প্ৰিয় শ্ৰোতা, বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়া মইভৰ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টছত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো পিয়াচি সেনগুপ্তাৰ কণ্ঠৰ দুটি ভজন।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पाकिस्तान कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the Upper House met at 2 PM after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Earlier in the day, the Upper House witnessed continuous uproar over various issues, including the alleged police action during students' protests over the NEET matter. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The Lok Sabha has also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress and opposition parties of running away from a discussion on the students' protest, saying that the government is ready for a detailed discussion on the issue. Speaking to reporters at the Parliament premises, Mr. Rijiju said Home Minister Amit Shah was also ready to respond to the issues raised by the opposition, but they are not allowing the House to function. Meanwhile, Congress MP Pawan Khera alleged that the Home Minister was avoiding making a statement on the matter. India today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for New Delhi. The spokesperson said this was also reiterated at the recently held 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs.
2: India-China border affairs, which was held on 6th, and you already aware of the statement that we put out. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential.

গড়া আমার সপোন ভরা।

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45ৰ পৰা সমাচাৰ সন্ধ্যা 9:00 News@9 আৰু 9:15ৰ পৰা স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰযোগে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
3: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
2: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
4: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
2: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
5: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि

0: संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
3: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
4: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
4: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हरण हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की

0: तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश

भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमान डीसी चंद्रशेखर जी।
2: प्रश्न संख्या 241। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून 2026 की स्थिति के अनुसार अब तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित निर्माणाधीन और चालू क्षमता संबंधी राज्यवार स्थिति क्या है? ख, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत जुटाया गया निवेश कितना है? और ग, ग्रिड संपर्क, पारेषण, ट्रांसमिशन, अवसंरचना और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में किन किन बाधाओं की पहचान की गई है?
1: Now, honorable minister, speaker sir, they never persuade me. You are always persuading me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, no, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except the Gargeji. I am always under the pressure of Gargeji, not that of anybody else. Honorable Minister, first supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji.
3: Sir! Sir! Sir!
1: Sir! Then first supplementary, G.C. Chandrasekhar ji.
3: Mike!
1: You take your seat, I am calling him.
3: Sir, Mike!
1: You take
3: Mike.
1: Sir, supplementary Shriman G.C. Chandrasekhar ji.
3: Sir, kindly do not off the mic till you complete my question, sir.
1: Sir, you
3: this
1: please,
3: is my request. Do not off the mic, sir.
1: I am allowing you. Sir. I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji.
4: I am calling the second supplementary, Dr. Lakshmikant Bajpai ji. और इनके लिए क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है?
2: श्रीपद यशो नाइक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री।
5: सभापति महोदय, भारत के लिए ऑफशोर विंड एनर्जी कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस प्रदान करती है। उसमें से हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सेक्टर तमिलनाडु में लगभग 50-54% और गुजरात में 30-40% तक CUF उपलब्ध है, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी प्रत्येक मेगावाट से अधिक एनर्जी जनरेशन इसकी संभावना होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑफशोर विंड जो है, तो ऑफशोर विंड की तुलना में अधिक जनरेशन और वहां पैदा होते हैं और उसकी कम वेरिएबिलिटी को प्रदान करता है। तीसरा है सोलर पावर को विंड एनर्जी कॉम्प्लीमेंट करती है। अध्यक्ष महोदय, चौथा है तो कैर लैंड की आवश्यकता उसमें नहीं होती है और इसे लैंड एक्विजिशन से राइट ऑफ वे इसे जुड़ी कई कंस्ट्रेंट से सभी बच जाते हैं जो लैंड में रिन्यूअल प्रोजेक्ट में सामने आ जाती है। सोशल इकोनॉमी को बूस्ट करता है और ऑफशोर विंड से डेवलपमेंट से पोर्ट, वेदर, फैब्रिकेशन, मरीन लॉजिस्टिक्स और कोस्टल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, जिससे नए एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन पैदा होती है।
1: द थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मोदी जी।
6: ड्यू टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस the renewable energy in hydro project as well as in wind project, how much it is affected, is there any losses, if it is there, has it been measured, and I would like to know how every state is affected by drought and cyclone and hurricane and flood and renewable energy with respect to that. Thank you, sir.
1: Honorable Minister, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, जो ऑफशोर विंड का

0: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আজিৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ অনুষ্ঠানত নিবেদন কৰিছো শৰৎ কুমাৰৰ চেহনাই বাদন ৰাগ মাৰু বিহাগ।